पुस्तक बैग अफ द इयर 2024 र 2025 को सम्मान सिटिजन्स बैंक विश्वास को नाम सिटिजन्स बैंक हजुर को प्रगति को सहयात्री।

0: हमारी साथी का सांप काट ली। अब कहाँ कर रहे, एक जल्दी उपचार केंद्र पहुँचा मिला तो ठीक रहा।
1: ओहो, ऐसा समय पर एम्बुलेंस और चार चक्का गाड़ी खोज के अगोर के नहीं बैठे चाहिए। यह नक्चरवे के गांव में हमारे एक दिन मोटरसाइकिल भवा साथी हैं, फोन करी थे हम, आप ना घबरावा जाए, साथी का ध्यान दिया जाए। हेलो मुकेश, तू तुरंत मोटरसाइकिल लेके यहाँ आओ तो, यह एक जनी बहनी का सांप काट ली है, इमरजेंसी होगा, तुरंत उपचार केंद्र ले जाए पड़ा, राजमार्ग चौराहा से 100 मीटर पच्छू बायर हन हमरे। मुकेश जल्दी आओ ना सब काम छोड़ के।
2: होते संतोष, हम मोटरसाइकिल लेके चले आए।
1: सुना जाए बहनी, सांप काट लिया व्यक्ति का जितना हो सके उतना जल्दी एंटी वेनम उपलब्ध रहा स्वास्थ्य केंद्र में ले जाए चाहिए। ऐसे समय पर जल्दी होने वाला यातायात के साधन छनोट करके चाहिए। यदि मोटरसाइकिल की व्यवस्था है तो अपने और सवारी चालक के बीच में सांप काट लिया व्यक्ति का सुरक्षित हुए समय से तुरंत उपचार केंद्र पहुँचा के चाहिए। वो देखो मुकेश मोटरसाइकिल लेके आएगा, हमारे विश्वसनीय साथी है, हम तुरंत बीमरिया का अपने और मुकेश के बीच में रख के मोटरसाइकिल से उपचार केंद्र पहुँचाए थे, आप हमारे साइकिल लेके वहरे आवाज।
0: होते भैया बहुत ही सहयोग करा गए, चला जाए जल्दी चला जाए।
3: याद रखा जाए, सांप के डसे के बाद मोटरसाइकिल स्वयं से भी बुलावा जाए, सर्पदंश उपचार केंद्र जाए के जान बचावा जाए।
4: यदि समय पर उपचार कई मिले पर सांप डस लिए व्यक्ति का बचाए सका जाता है और इनसे होए वाला मृत्यु दर कम कर सका जाता है। सांप डस लिए व्यक्ति का जल्दी से जल्दी उपचार केंद्र में ले जावा जाए, ये वही व्यक्ति के जीवन बचाव एक बहुत मदद करत है।
1: विश्वसनीय और सही जानकारी प्राप्त करे और नक्चरे के उपचार केंद्र कहाँ है कह के पता लगावे, आधिकारिक वेब पेज snakebitenepal.org में जाके आवश्यक जानकारी ले सका जाता है।
5: नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय, इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र, विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल, WWF नेपाल का साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौं मिटटाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश।
6: मेरो साथीले सर्पले टोक्यो।
7: के भयो बहिनी, सबै कराएको हो? सबै कराएको हो?
6: हो दाइ हो।
7: लौन, अनि यो भुइँमा को हो? किन भुइँमा लडिरहेको?
6: सुन्नुहोस् न दाइ, हामी दुईटै जङ्गलमा घाँस काट्न आएका थियौँ, मेरो साथीलाई सर्पले टोक्यो। लौन के गर्ने हो न, लौन यसलाई छिट्टै उपचार केन्द्र पुर्याउनुको आयो हुन्थ्यो। लौन दाइ के गर्ने हो न, लौन।
7: यस्तो बेलामा एम्बुलेन्स र चार पाङ्रे मोटरले खोजेर कुरेर बस्नु हुँदैन। यही नजिकको बस्तीमा मेरो एकजना मोटरसाइकल वाला साथी छ, फोन गरिहाले, सबै नातिकन साथीलाई ध्यान दिनुहोस् है।
6: हुन्छ दाइ, हुन्छ।
7: हेलो मुकेश, तुरन्त तिमी मोटरसाइकल लिएर यहाँ आइहाल त, यहाँ एकजना बहिनीलाई सर्पले टोकेर इमर्जेन्सी पर्यो, तुरन्तै उपचार केन्द्रमा लानु पर्यो। राजमार्ग चौराहाको 100 मिटर पश्चिम देब्रेपट्टि छौँ है हामी। मुकेश झट्टै आऊ है, सबै काम छाडेर।
8: हुन्छ सन्तोष, म मोटरसाइकल लिएर आइहाल्छु।
7: सुन्नुहोस् बहिनी, सर्पले टोकेको व्यक्तिलाई जति सक्दो छिटो एन्टी भेनम उपलब्ध भएको उपचार केन्द्रमा लगिहाल्नुपर्छ। यस्तो बेलामा सबैभन्दा छिटो हुने यातायातको साधन छनौट गर्नुपर्छ। यदि मोटरसाइकलको व्यवस्था भए आफू र सवारी चालकको बीचमा सर्पले टोकेको व्यक्तिलाई सुरक्षित हुने गरेर बसाएर तुरन्तै उपचार केन्द्रमा पुर्याउनुपर्छ। मुकेश मोटरसाइकल लिएर आइहाले, मेरो भर पर्ने साथी, म तुरन्तै बिरामीलाई मुकेशको मोटरसाइकलको बीचमा राखेर उपचार केन्द्र पुर्याइहाल्छु। तपाईँ मेरो साइकल लिएर त्यतै आउनुहोस्।
6: हुन्छ दाइ, कत्रो घुम्नु गर्नुभयो, जाउँ छिटो जाउँ।
9: याद राख्नुहोस्, सर्पले डस्दा मोटरसाइकल स्वयंसेवी बोलाऊ, सर्पदंश उपचार केन्द्रकै ज्यान बचाऊ।
4: यदि समयमै उपचार गर्न सकेमा सर्पले डसेको व्यक्तिलाई बचाउन सकिन्छ र यसबाट हुने मृत्यु दर पनि कम गर्न सकिन्छ। सर्पले डसेको व्यक्तिलाई छिटो भन्दा छिटो उपचार केन्द्रमा लगिहाल्नुहोस्, यसले उक्त व्यक्तिको जीवन बचाउन ठूलो मदद गर्छ। भरपर्दो र सही जानकारी प्राप्त गर्न र नजिकको उपचार केन्द्र कहाँ छ भनी पत्ता लगाउनका लागि आधिकारिक वेब पेज snakebitenepal.org अर्थात् snakebitenepal.org मा गई आवश्यक जानकारी लिन सकिन्छ।
5: नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा

संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिड टाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेण्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश

0: मैले
1: मिल्दैछ कि ब्रो?
2: राम्रोसँग ल मिलाइदिए,
1: राम्रोसँग ल गाइदिए, म चाहिँ

0: पटक बैग ऑफ द ईयर 2024 र 2025 को सम्मान सिटीजन्स बैंक विश्वास को नाम सिटीजन्स बैंक हजुर को प्रगति को सहयात्री।
1: नमस्कार, आप इतना घड़ी सामुदायिक रेडियो बुद्ध आवाज के संग्री रहल जाइत बा। इस समय हो थारू गीत संगीत के, आप इस समय में थारू गीत संगीत सुन सकल जाइ।

0: शान्ति र विकासको आधार सुन्दै हुनुहुन्छ सामुदायिक रेडियो बुद्ध आवाज 89.6 MHz।
1: यति बेला दिउँसोको 2 बजे हो।
2: क्यान्सरको सम्पूर्ण उपचार विराटनगर। सबै प्रकारका क्यान्सरको उपचार, शल्यक्रिया, रेडिएसन सहित न्युक्लियर मेडिसिन सेवाहरू उपलब्ध छन्। नेपालको कुनै पनि ठाउँबाट क्यान्सरको उपचारका लागि यति एयरलाइन्स मार्फत 2 तर्फी निशुल्क टिकटको व्यवस्था गरिएको छ र उपचारका लागि पालो खोल्नु पर्दैन। विराट मेडिकल कलेज टिचिङ हस्पिटल अन्तर्गत नेपालको नम्बर 1 क्यान्सर हस्पिटल विराट क्यान्सर इन्स्टिच्युट विराटनगर। सब जानकारीका लागि सम्पर्क नम्बर 97160025 30।
3: ए विवेक,
4: अरे बाप रे बाप, मरी गान।
3: ए साथी लोग, तोहरे लोग एक छिन फुटबॉल बंद करो तो वो देखो विवेक के का होएगा। वहर झाड़ी को और ना जाओ कहे रहे।
5: वो दिखाओ सब भाग गवा उहर। विवेक का काय प्लीज की काओ। उफ, स्कूल के फुटबॉल देखे आए रहे और केस दुर्दशा आए पड़ा।
4: अरे हमें तो सांप काट ली, हम मर जाब।
3: विवेक ढेर न घबराओ साथी। अच्छा शांत हो के ढेर हिल डुल ना कह के बैठो तो हमका हमारे स्वास्थ्य केंद्र पहुँचावा जी। ए पारस, वहाँ घर के भैया का मोटरसाइकिल लेके आवे कहो तो।
5: हाँ विवेक का ही खुला जगह पर सुताओ, ढेर हिलावे डोलावे न कह के। हम यही कापी से हौकी थे, गठिया के कुछ निचवा काटे है, फूलत है, काटी लिया जगह का छुए और चलावे न ही चाहिए।
3: अब हम विवेक का साहस हुए कहके ओकर कसा पेटी बटन सब खोल दी थे और घड़ी और अंगूठियों निकाल दी थे।
5: वो थे रोशन, हम इधर विवेक के जूता और मोजा धीरे धीरे निकाल दे थे।
6: ढेर जैसन सांप के जसाई खतरनाक नहीं होते, समय पर उपचार कई मिले पर विषालु सांप काट लिए व्यक्ति का बचाई सका जाता है। सांप काट लिए व्यक्ति का जल्दी से जल्दी उपचार केंद्र में पहुँचाई दिए से उनके बढ़वार क्षति हुए से बचाई सका जाता है।
3: विश्वसनीय और सही जानकारी प्राप्त करे और नक्चेरे के उपचार केंद्र कहाँ है कहके पता लगाए आधिकारिक वेब पेज snakebitenepal.org में जाके आवश्यक जानकारी ले सका जाता है।
7: नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय, इपिडियोमोलॉजी।

0: पाल्पा भैरव मेडिकल हल बुटवलको अत्यन्त जरुरी सूचना।
1: विगत 25 वर्षदेखि मुटु तथा छाती र छाला रोगको सफल उपचार सेवा सञ्चालन गर्दै आइरहेकोमा यही असोज 25 गतेदेखि काठमाडौँ B&B हस्पिटलका हाड जोड्ने नसा तथा लिगामेन्ट विशेषज्ञ र आमदा अस्पतालका बाल रोग विशेषज्ञ डाक्टरद्वारा समेत बिरामी जाँच गरिने भएकोले उल्लेखित समस्या भएका बिरामीहरूले सम्पर्क गर्नुहुन अनुरोध छ।
0: ब्लड प्रेसर, सुगर, थाइराइड, मुटु रोग, छाती रोग, ग्यास्ट्रिक अल्सर, निमोनिया, चक्कर लाग्ने, लुतो, दाज, पुतले, दुबे, चाया, डन्डीफोर, पुरानो घाउ खटिरा, यौन दुर्बलता, सेतो पानी बग्ने, यौनाङ्गका घाउ खटिरा, कपालको रौँ झरिरहने, हाड जोर्नीका समस्याहरू, प्यारालाइसिस, जोर्नीहरू दुख्ने, नचल्ने, नसा च्यापिएको, ढाड कम्मर दुख्ने, मेरुदण्ड र घुँडाको समस्या, लिगामेन्ट च्यातिएको, भाँचिएको, हाड जोर्नीका विशेष अपरेसन र बालरोगसँग सम्बन्धित सबै समस्याहरूको विशेषज्ञ चिकित्सकहरूद्वारा जाँच तथा उपचार गरिन्छ।
1: सम्पर्क पाल्पा भैरव मेडिकल हल, श्रवण पथ बुटवल, साझा हस्पिटलको अगाडि।
0: सम्पर्क नम्बर 071534905, 071553905 र मोबाइल 98570178010।
2: अब सुन्नुहोस् श्री स्टिल्स रेडियो कथा भाग एक। हाम्रो शर्माजीले आफ्नो सपनाको घरलाई श्री एफई 550D एकदम बलियो गरेर बनाउनु भएछ। नयाँ घरमा सरेदेखि नै उहाँको परिवारले हाँस्दै खेल्दै आफ्नो जीवन जिउन थालेछ। सब एकदम खुसी हुन्छ। तर त्यसको केही दिनमै एकदम ठूलो भूकम्प आउँछ। रेडियो सुन्दै गर्नुहोस्। अब बाँकी कथा अर्को भागमा। श्री एफई 550D सर्वोत्कृष्ट भूकम्प प्रतिरोधक स्टील।
3: का हो गए सामान बिटिया के लेके आए हो?
4: देखा जाए ना काका, बिटिया फूल लोड़े फुलबारी गई रही, साफ डस लीहिस, बीख निकाल दिया जाए, यहीं से लेके आए हन।
3: साफ डसी लिए बीख के उपचार करे के तो सर्पदंश उपचार केंद्र में ले जाए के परी कमल। वहीं दक्ष और तालीम प्राप्त चिकित्सक लोग बिखालू सांप डसे है कि नहीं पता लगाई के सर्पदंश उपचार में प्रयोग होए वाला एंटी वेनम से उपचार करत है।
4: सर्पदंश उपचार केंद्र के बारे में तो हम सुने हन, लेकिन
3: नहीं, बिटिया का तुरंत उपचार केंद्र में लेके चले जाओ। नेपाल सरकार सर्पदंश के उपचार तथा एंटी वेनम समेत निशुल्क उपलब्ध करावत है। खर्च के चिंता नहीं लेके पड़ी।
5: बाबा,
4: बिटिया न घबराओ, तू का कुछ नहीं हुई, हम एम्बुलेंस का फोन करी थे।
3: एम्बुलेंस आवे के समय लाग सकत है। हमरे बेटवा संदेश मोटरसाइकिल पर तुह का उपचार केंद्र पहुँचाई गयी। बाबू संदेश, तैयार होके जल्दी आओ। तो
6: सर्पदंश प्रभावित जिला सब में बीमरिया लोग के समय पर उपचार के जान बचावे के उद्देश्य से सर्पदंश उपचार केंद्र संचालन में है। ये उपचार केंद्र में सर्पदंश के उपचार मुफ्त में मिलत है। सांप की डसाई से आदमी के मौत न हुए के खातिर सरकार सर्पदंश उपचार में प्रयोग होने वाला एंटी वेनम निशुल्क उपलब्ध कराया है। अपने नजदीक रहा सर्पदंश उपचार केंद्र के संपर्क नंबर साथ में रखे के चाहिए।
7: सर्पदंश संबंधी विश्वसनीय और सही जानकारी प्राप्त करे के और नजदीक के सर्पदंश उपचार केंद्र कहाँ है पता लगावे के आधिकारिक वेब पेज www.snakebite.nepal.org में देख सका जाता है।
8: नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय, इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियंत्रण महाशाखा र राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र, विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल, WWF नेपाल का साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिड टाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश।
9: यो युनाइटेड हस्पिटल यही होइन र भएको, कहाँनिर सरेछ र? बिरामी भएर बस्न खाना छैन, हस्पिटल भेटिने होइन।
10: ए दिदीले युनाइटेड हस्पिटल खोज्दै आउनु भएको? यो त सरेर आफ्नै सुविधा सम्पन्न भवनमा गएको छ नि। ल, 4 नम्बर चोकबाट अटो चढ्नुहोस्, त्यसपछि तौलियावा रोड हुँदै 2 किलोमिटर अगाडि जानुहोस्। त्यहाँनिर ठुलो बोर्डमा युनाइटेड हस्पिटल लेखिएको छ, त्यहाँ जानुभयो भने तपाईँको समस्याको समाधान भइहाल्छ नि। अनि दिदी, युनाइटेड पहिलाको जस्तो छैन नि, अहिले त धेरै सुविधा सम्पन्न भएको छ। तपाईँलाई जे समस्या समस्या भयो त्यसको विशेषज्ञ डाक्टरबाट उपचार हुने भएकाले कुनै चिन्तै लिन पर्दैन।
5: हजुर, विशेषज्ञ डाक्टरबाट चेक जाँच हुने जिल्लाकै सुविधा सम्पन्न एकमात्र अस्पताल युनाइटेड हस्पिटल बारगुङका चार ठाकुरापुर र झुङ्गाको बीचमा। यहाँ विशेषज्ञ डाक्टर सहित दैनिक ओपिडी सेवा, पेट छाती मुटु तथा सुगर रोग विशेषज्ञ सेवा, हाड जोड्ने सम्बन्धी, हड्डी भाँचिएको, रडहरू राख्ने निकाल्ने, महिला तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ सेवा, मेजर अपरेशनहरू, एपेन्डिसाइटिस, पाचेघर फाल्ने, हर्निया, पित्त थैलीको ढुङ्गा निकाल्ने, चिरेर बच्चा निकाल्ने का साना ठुला अपरेशन,
10: चौबिसै घण्टा सेवा उपलब्ध छ।
5: नभुल्नु होला 100 रुपियाँमै विशेषज्ञ टिकट।
11: विस्तृत जानकारीका लागि युनाइटेड अस्पताल बारगन्दा चार ठाकुरापुर कपिलवस्तु, फोन 076-550-200, मोबाइल 98-570-55-138।

0: फेरि मन्जुरले माया गर्छु म बिना बाँच्न सक्दिनँ
1: सक्छ होला मेरो काका।

0: ना डराओ बाबू ना डराओ, सांप का कुछ ना करे थे, सांप कुछ ना ही करत है। अच्छा वो देखो वो अपन रास्ता चल गया कुछ की ही तो, और सब सांप विशालू ना ही होते है ना।
1: विशालू है कि नहीं, कैसा चिन्ह है अम्मा?
0: हाँ बाबू, नेपाल में मिले वाले विशालू सांप के बारे में सुनो। एक ठो होते करेंट जो प्राय रात के समय में घर भीतर हल सकत है, एक दस एक बाद ना ही पिरा सकत है, लेकिन दस एक बाद शरीर के भाग न चलक मेर से सांस लिए कठिन हुए मेर से पक्षघात हो सकत है। और ऐसे होते हैं गोहवन अर्थात फेटारा जौन बहुत रिसहा मेर के होते हैं और फाड़ बनावत हैं। गोहवन सांप दिन या रात दोनों ओकर दिखाते हैं और प्राय सवेरे संध्या के दिखाए वाले एक दस एक बादो पक्षघात हो सकत है।
1: अच्छा,
0: और दूसरे होते हैं हरियो जात के सांप, एक दस एक बाद दस लिहा भाग फूल जात है और बहुते पिरात है, खून पातर हो के रक्त श्राव हो सकत है। और वही मेर से हमरन के देश की तराई के सब भूभाग में मिले वाले गंडाइस जौने के ऊपर बाघ के जिस बुट्टा होत है, एकरी दसाई के बीमारियां कमे मात्रा में मिलत है, लेकिन एकर दसाई एकदम खतरनाक होत है।
2: बसायाम और बाली काटे समय में सांप के कटाई अथवा दसाई के घटना सब बहुत होत है। बाढ़ और प्राकृतिक प्रकोप सब के कारण सांप के वासस्थान नष्ट होत के सांप दसाई के घटना सब अधिक होत मिलत है।
3: ढेर जैसे सांप के दसाई हानिकारक नहीं होते है, तब वो सांप दसिन लीज तो तुरंत निर्वय के उपचार केंद्र में चल जाए चाहिए।
2: विश्वसनीय और सही जानकारी प्राप्त करे और नकचेरे के उपचार केंद्र कहाँ है कहके पता लगावे आधिकारिक वेब पेज snakebitenepal.org में जाए के आवश्यक जानकारी ले सका जात है।
4: नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय, इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियंत्रण महाशाखा र राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र, विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल, WWF नेपाल का साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौं मिड टाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश।

0: वर्ष को अवसर में TCL का विभिन्न होम अप्लायंस को खरीद में कैश बैक तथा श्योर शॉट गिफ्ट वॉशिंग मशीन में 6 केजी एरियल मैटिक एसी में फ्री इंस्टॉलेशन र नागरिकता मात्र भए पुग्छ सहज ईएमआई मार्फत खरीद कर सकता ग्लोबल नंबर 1 TCL इंस्पायर ग्रेटनेस
1: एसई सकियो अब रमाइलो शुरू भयो
2: नेपाल टेलिकमले ल्यायो विशेष एसईई अफर मात्र रु 20 मा प्रिपेड सिम कार्ड रु 9 रुपियाँ 80 पैसा ब्यालेन्स सहित 30 दिनसम्म दैनिक पाउनुहोस् 20 मिनट भोइस 500 एमबी डेटा 10 एसएमएस
1: अझै रमाइलो रु 50 वा सोभन्दा बढी रिचार्ज गर्दा 50 एमबी बोनस डेटा 50 मिनट बोनस भोइस 50 एसएमएस बोनस
2: यो योजना 2082 चैत्र 26 गते देखि 2083 असार 26 गते सम्म
1: थप जानकारीका लागि 1498 मा सम्पर्क गर्नुहोस्
3: नेपाल टेलिकम राष्ट्रको संचार

0: बेनकाडो बाथ फिटिङ सेनिटरी र मोडुलर किचन सेट सम्म उपलब्ध छ है।
1: सम्पर्क कृष्णा सप्लाइज बारगंगा बैरिया कपिल वस्तु फोन 076550317 मोबाइल 98571713 संचालक विराट खरे।

वाटर कूलर सीलिंग फैन स्टैंड फैन मिक्सर र आइरन को खरीद में एक्साइटिंग ऑफर पाउनुहोस् हरेक 15 दिन में क्रम्प्टन को मिक्सर र बम्पर लक ड्रामा माइडिया डबल डोर रेफ्रिजरेटर जितने मौका पनि नागरिकता मात्र भए पुग्छ सहज ईएमआई मार्फत खरीद गर्न सकिन्छ।